0: 416-6316-3345 416-6316-3345 416-616-3345. मैं ना एक नंबर दिना होना थानू टी एस सी कंस्ट्रक्शन वाला दा ये ना तलविंदर बाई जी होना ने मैं होने इन्ना तो ना इंटरलॉकिंग दा काम कराया बाई जी उन्हें इन्ना सोना काम कर दिया मैं कहना छाड़ी गला दे अमेजिंग जॉब मैं दिलों कह रहा मैं आप इन्ना तो काम कराया सो मैं कोई थोनू कह दो कि झूठी गल नहीं दस रहा मैं ऑनेस्टली कह रहा बहुत ही सोना काम है इन्हों का सो तुसी अगर किसी ने भी ड्राइवे बनवाना इंटरलॉकिंग करवानी है कोई अपना तुसी कोई बैकएड पक्की करवानी है कि इन्हों का नंबर नोट कर लो तुसी नाराज नहीं होंगे वेरी गुड जॉब तो सब तो रीजनेबल रेट है इन्हों का 416-930-4238 नंबर है 416-930-4238 416-930-4238 416-930-4238 जरूर करो अमेजिंग जॉब अमेजिंग टीम ते तुसी एक बार कॉल करके साडा रेफरेंस दे डिस्काउंट तो पक्का ही है सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट भी है ग्रोसरी स्टोर भी है 24 घंटे 7 दिन खुला दो लोकेशन 24 घंटे खुला 10 लोड मैल गेट सेंडर लोड मैकलॉगलिन 10970 ब्रैमली रोड ब्रैमली कंट्री साइड एक चिकन लेग लो एक फ्री एक बिरयानी फ्री एक फिश पकौड़े का पाउंड लो दूजा पाउंड फ्री सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर 24 घंटे खुला 10 लोड मेल गेट सेंडर रोड मैकलॉगलिन 10970 ब्रैमली रोड ब्रैमली एंड कंट्री साइड अर्जुन जी थोड़ा गाना लाने एक कॉल तो बाद 3733 हेलो नंबर हेलो जी
1: हेलो हाँ जी बाई जी की हाल चाल है
0: ठीक है जी किवें हो
1: ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਸਤਰੂਜ ਆਪਣੇ ਪਈ ਆ ਬਾਈ ਡਾਊਨਲੋਡ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੈਂਡ ਵਟਸਐਪ ਤੇ
0: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਾਲ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਬੈਨ ਬੁਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ

सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झुरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुट चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत के नाल।

0: 8 बंदों के खाते में फंडिंग गिरी, जिन्होंने हमें मई और अप्रैल में ज्वाइन करा था बैच को, राइट। तो मतलब काम होने के बाद हमारी हम फीस देते कितनी, 199 या $499। गवर्नमेंट जब इतनी जगह पे पैसा लगाती है, चाहे LGBT को गवर्नमेंट 100 बिलियन दे रही है, रिफ्यूजीज के होटल बिल, हेल्थ केयर बिल बिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंड कर रही है, यस गवर्नमेंट 2 हफ्ते बाद कट्स कर रही है नेक्स्ट अकेडमिक ईयर से, तो अभी एनरोल करें और अभी फायदा लें। 2024 का आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट देखें, खोलें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं। जितना ज्यादा फैमिली साइज उतनी ज्यादा फंडिंग आपके अकाउंट में, सीधा हमारे अकाउंट में नहीं सर, आपके अकाउंट में कोई इसमें चलाकी है ही नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। कॉल करें 437-234-3175, 437-234-3175। ऑलरेडी आपके आस पड़ोस वाले सब लोग एनरोल हो चुके हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, वो सब हो चुके हैं एनरोल।
1: 437-234-3175। नागपाल सर मैं भी एप्लीकेशन ले करना, मैं भी अपना स्किल डेवलप करना, रेडियो से पैसे नहीं बन रहे मैं भी बढ़िया स्किल डेवलप करना, सो मैं फंडिंग मिल सकती है जी?
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आप मान के चलेंगे, जब जहाँ भी मैं एडवर्टाइज करना शुरू करता हूँ ना
1: जी,
0: तो पहले जो आपके जो होस्ट है वो सब देखते हैं कि चीज सही है नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए।
1: मैं भी आना, मैं भी कंसल्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट दस मैंने की लेके आने,
0: पहले वो इस्तेमाल
1: फिर विश्वास करें,
0: पहले
1: इस तो पहला के
0: इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास और फिर दोबारा शुरू करें,
1: क्योंकि इस तो पहला के फंडिंग बंद हो जाए।
0: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: सो 437-234-3175 राइट नाउ कॉल कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, $30,000 तो लैके $1,00,000 की फंडिंग लै सकते हो, सिर्फ 2 वीक रह गए, उस तो बाद गवर्नमेंट ने फंडिंग बंद कर देनी है, ग्रांट्स बंद हो जानी है, सिर्फ लोन रह जाना है। नागपाल सर नंबर
0: 437-234-3175, 437-234-3175।
1: बहुत शुक्रिया,
0: उन्हें भी तुसी कॉल कर सकते हो 437-264-3175।
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू।
1: 905-673-3337 जुड़े हो रेडियो प्रोग्राम उड़ान दे नाल 530 तो प्राप्त संधु दे नाल। चलिए फिर उसे ही माहौल दे विच जी सर, ससी काल 4587 तुसी ऑनर हो।
2: ससी काल जी, बहुत वधिया तुसी दस रहे सी कार्ड आई बारे जी, पहला पढ़िया भी सीगा थोड़ा
1: जी,
2: मूवी हजे देखण दा टाइम नहीं मिलिया
1: जी,
2: पर सच तां सच ही है जी, है ना
1: जी,
2: सच ने तां रह गई गल जी के जो नहीं बोलते यही अभी कहने ना, भगत सिंह
1: हां भाई जी, मैं सिर्फ इना कहना चाहना आ कि चाहे असी किसी भी पार्टी नाल संबंध रखते हैं, असी इंसान तो है ना, असी हा दा नारा तो मार सकते हैं ना, कई बार असी पार्टियां नूं मुख रख लैने कि चलो भाई असी इस पार्टी ने असी गल नहीं करनी, पर कुछ चीजा सानू गुरु महाराज यही कह के गए ना, खालड़ा साहब दी बुक दे पिछे लिखिया सीगा, उन्होंने भी यही लिखिया सीगा कि गुरु दा सिंह होने दे नाते साडा फर्ज है कि असी हर जुल्म दे नाल लड़िए ते बिना डरो लड़िए, हक लई खड़िए ते इंसाफ लई लड़िए।
2: जे सर आपां देखिया जावे पिछे हिस्ट्री
1: जी,
2: गुरु गोबिंद सिंह जी नाल भी जदों चमकौर दी लड़ाई है किन्ने सिंह रह गए सीगे जी, सारा पछाणे लड़ेगा
1: जी,
2: सो उपजे 40 ही रह गए सी ना एंड ते
1: जी, बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत गल कही और कॉल्स सारिया ही लाइन बिजी ने, सो मैं साडे स्पॉन्सर साहबान नाल पहला मैसेज ले ला, उस तो बाद फिर गल करांगे। जफर मलिक जी तुसी भी ओनर हो, साडे शमीत जी भी अकाल मोर्ग के प्रिंसीपल ब्रोकर वो भी ओनर ने, बहुत सारिया कॉल्स ने, सारिया लाइन बिजी ने, तुसी होल्ड रखियो, बस एक खूबसूरत जिहा सुनेहा लैके मोर्ग जी का फिर थोड़े वाल आने हैं तो फिर थोड़े वाल भी उगाने हैं। रशमीत जी सत श्री अकाल, तुसी ओनर हो अकाल मोर्ग के प्रिंसीपल ब्रोकर जी,
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहानू ते साडे सारे लिसनर्स नू रशमीत कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग जी,
1: वेरी गुड।
3: जिदा तुसी मेंशन कीता जी मॉर्गेज रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हैगी अपने लिसनर दी कॉल कर सकदे ने मैनू रशमीत कौर नू 6475394499, गूगल कर सकदे हो रशमीत कौर मॉर्गेज ब्रोकर। अब जी गलबात करांगे जी एक्विटी बारे, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਐਕੁਇਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 80% ਲੋਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ $1 million ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ 80% ਮਤਲਬ 8 lakh ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा।
3: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स,
2: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा। प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ। डीलिंग विद ऑल बैंक।
3: कॉल 647-606-8110
2: और विजिट शर्मा मॉर्गेजेस डॉट कॉम।
4: कनाडा विच प्योर पंजाबी खानिया अते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
0: डाइनिंग, टेकआउट, केटरिंग, लाइव ट्रक ल्याके थोड़े घर केटरिंग दी सर्विसेज दिंदे ने।
4: वेज नॉन वेज केटरिंग, ताजियां स्वादलियां मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी। सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देण ते पाओ 10% डिस्काउंट।
0: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172। कॉल करो गुरजीत रंधावा 647-338-9172।
5: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
0: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
5: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
0: 647-8355-294 647-835-5294।

0: भी बुलाऊंगे। जदों भी बुलाऊंगे मैं हाजिर
1: हूँ। बुलाए तो बना ही आ जाने
0: स्वागत
2: हरजीत प्यारे कहने मेनू कहने
1: ला दिया करो दो बार मेरे आला रहन दिया करो।
2: अज मैं ता नहीं कहा मैं कह भाई अजे तू सिख ला अजे तू 80 नंबर लाए है
1: अगले साल।
2: अच्छा मुंडा परविंदर अपना इच्छा स्टार मदर गल करी बहुत तगड़ा प्लेयर अपने बुर माजरा पिंड है
1: ठीक है कोई नहीं कर लेंगे
2: नो
3: प्रॉब्लम। बहुत ही प्रेरणा दायक जिहड़ी कहानी है दसी है वाकई तो सिक्ख्या लैण दी लोड़ है। सानू जमीन नाल जुड़ना चाहीदा अपना पिछोकड़ नहीं भुलना चाहीदा
1: सच्ची गल
3: औकात नहीं भुलनी चाहीदी अपां तां भुलदे नहीं कदी
1: हम
3: तां अपना पिछला समां याद करके सवाद आंदा
1: सच्ची गल नाले हासा जिहा बणदा इक गल दा वी असीं आ कुछ कीता हैना।
3: हां बिलकुल ओहदे च ओह च माड़ा की आ
1: माड़ा की आ
3: देखो ना बसे चढ़ना माड़ा ना तुर के जाना माड़ा ना साइकिल चलाना माड़ा ओ अमीर लोग तां इह चीज़ां लभदे आ वी हाए साडी सेहत इजाजत देवे ते असीं इह कम करिए
1: सच्ची गल।
4: मिठी आवाज किथे चली गई
1: चक
4: भाई बड़ा सोहना प्रोग्राम करदा भाई बहुत सोहना बहुत वधिया मैनू लगता कि प्रोग्राम ना खोल
1: चक चलो कोई नहीं दे
4: और बाबे अच्छा गल सुनो को बूटा
1: पहला
4: दसो भी बूट क्यों पाई उन्होंने
1: क्यों पाइए
4: हां जी
1: क्यों
4: मैं तुम भी दसदा जब मैं ये जित जाते हैं है ना फिर तुम ओन किसी नही लैके आम पी पी वे देखे
1: आंदे ही नहीं फिर कहते इस वे जागते नहीं
4: बुरा लगदा सची
1: लगदा
4: पिछे अपने बंदे नूं कहने भी चलो बाई दे आया सी उन्हां नूं वोटां पाओ यार जरूर जिताओ है ना ओ फिर देख लो तुसीं
1: संपर्क जा सकता बुशिंग अलाइनमेंट का किंग पेंदा कोई भी रेवल का काम करवाना चाहते हो जे एंड गरी भाजी संपर्क कर लो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड डिक्सी एंड मैथिसन का एरिया 9 बजे तो लैके 6 बजे तक खुलते हैं मंडे टू सैटरडे 905-459-5533 905-459-5533 से संपर्क हो सकता 8205 भाई सत श्रीकाल जी जी
5: भाई सत श्रीकाल जी
1: किदा से
5: बहुत वधिया भाजी कॉल तुहानू पहली बार की कॉल
1: चक धन्यवाद
5: मैं सुनदा ही प्रोग्राम भाजी हुणे ही लाया सी पिछले जुड़ना भाजी मैं रहना ही इंडिया हूं उन्होंने 6 महीने एंट्री करती विजे की मैं रह के इंडिया खुश है भाजी।
1: अच्छा
5: मैचर सिटी जाने उत्थे वधिया रोटी मिली टॉप की रोटी सवेरे सैर करी 2 घंटे साइकिल चलाई दा जी
1: पेंशन लग गई

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चेहर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत सवेर, चढ़ती कला वाली सवेर, खूबसूरत स्रोत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके।

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 90545-12600. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
2: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiya ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne, full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
2: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

लो जी, ये ना दोहे है और मिक्स है ना, कबीर जी दे भी है, रहीम जी दे भी हैगे है, तुलसी दास जी दे भी हैगे है। सो ये ना बड़ी मकबूल हुई सी फिल्म। वो फिल्म दे विच जिवें कॉलेज दे विच कंपटीशन हुंदा है ना, सो दोहयां दा भी केड़ा जेड़ा एक दोहा बोलूगा ते दूजा उदा आंसर दूगा। सो बड़ा वधिया ये कंपटीशन सीगा इस फिल्म दे विच। सो कई फिल्मां दे विच इदां जेड़े रहीम है, कबीर है, तुलसीदास है ना, इन्हां दे दोहे जेड़े लिते गए आ। पहला हिंदी फिल्मां च बड़ा हुंदा सी, हुण तां आई थिंक जेड़ियां कोई नवीं हैगी आ, लगदा तुहानूं किसे च हैगे ऐड किते हुए तां जरूर दस्यो। पर ये फिल्म बहुत मकबूल हुई सी, उहदे गाने इन्ने जबरदस्त सी, फिल्म भी बहुत जबरदस्त सीगी ते बहुत मशहूर हुई सीगी। ते फिल्म दा नाम जे पता जरूर दस्यो, ते जिन्हां ने देखी है वो भी जरूर दस सकदे आ, ते बाकी गल्लां बातां आपां होर भी करांगे। ते बड़ी जिहड़े इहदे विच ना इह दोहे सी और जिहड़ी इह फिल्म सीगी, इस नाम तों गाणा जिहड़ा बड़ा ही मशहूर होया सीगा। और जिवें एक गाणिया की लेंथ होंगी, हाँ जी 3 मिनट है, 4 मिनट है, सो ये लेंथ गाणिया की बड़ी सी। जे इनू भी देखिए अपना 5 मिनट तो 24 सेकेंट का ये सारे दोहे ये लिते गए हैं। तो जोड़ा यदा मकबूल गीत सगा, तो आवाज़ भी बड़ी कमाल की है। आवाज़ उस समय जोड़ा ये सिंगर है ना, इन्हां दियां आवाज़ां उस समय बहुत मकबूलियत ते सीगियां, नंबर वन ते। एक होर भी बड़ी वधिया मूवी आई सीगी जिहड़े इहदे मेल सिंगर, वो उन्हां दी शुरुआत उत्थों हुई सीगी। सो जे याद है तां दस्सो जरूर, ते गल्लां बातां आपां करांगे अज तुहाडे नाल, ते नाल दी नाल फिर जिहड़ियां मेन होर गल्लां बातां उह वी तुहाडे तक जरूर करांगे जी शेयर।

0: टीवी पे वो बातचीत देखता हूँ तो सोचता हूँ कि किस एंगल से ये आदमी को मैं सदर समझूं। एक एंगल होता ना इंसान का, आप बोलेंगे यार बेहतरीन गवैया है, क्या इसका सुर है, अरे यार क्या बेहतरीन पहलवान है यार, क्या बटे हैं, क्या शटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जब भी मुंह खोलते आप रेफरी के बारे में बोल रहे हैं, आप प्लेयर के बारे में बोल रहे हैं, अरे भाई कोई प्रेसिडेंट आपसे पहले जितने भी गुजरे हैं, 250 साल की आप तारीख खुद बताए, आप अपना अभी सेलिब्रेशन करें, कोई बंदा बोलता हर मामले में? जरा सोचिए आप, हर मामले में से क्या है, आपकी कोई ना अहमियत है ना आपकी कोई वैल्यू है, लोग आपको एक मस्खरा बंदा समझते जो 18 महीने और बर्दाश्त करना है। समझ गए आप? तो ये चीजें पसंद नहीं आ रहे हैं और इन्हीं की हरकतों से सारी चीजें हो रहे हैं। लोग समझ रहे नहीं इस बात का, भाई पहले नौकरी दो फिर बाद में जो है टोकरी दो हाथ में, यानी सौदा लाने के लिए उसको ग्रोसरी के लिए टोकरी दो। पहले आप नौकरी छीनते जा रहे हैं, फिर आप बोलते हैं यार हम खुश है, हमारा फुला, हर चीज में झूठ। सुबह उठते पहला झूठ बोलते, वो सोने से पहले आखिरी झूठ बोलते। अभी तुर्की के साथ बातचीत हो रही, 15 मिनट पहले देखा, अब वो नाटो से निकल जाऊंगा बोल रहा। इनको अंदाजा भी है ये क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया में? 4-5 साल से बहन जी रशिया का चल रहा है, यूक्रेन का, वो तो आप खत्म नहीं करा सके। सारे लोगों के आप प्रधान बनते, आप वो सबके जो है वो बनते चले, आप प्रधान बनते, आप वो सबके जो है वो बनते चले जाते, पटवारी बनते, चौधरी बन के जाते। आप आपका कोई बंदा सुनते तैयार है? आप पड़ोसियों के साथ बदसुलूकी करते, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप गवर्नर बोल देते। कभी सोचिए कोई हमें पलटा के, हमारे इतने सियासतदान हैं, कभी हमारे पास का कोई बंदा बोलता? मोदी से मिलते उसको बोल देते आप एंजिल है और ये किलर है बोलते। उनको सोचना चाहिए, पूरी दुनिया वॉच कर रही है और ये भी बंदे पलटा के जवाब नहीं देते। तुम किलर बोल रहे मुझे, तुम तो मेरे 3 बंदे आके वहां मार के चले गए जहाज में इंडियंस को, तुम किलर है बोलना? आपके पास जबान नहीं है मुंह में? बोलिए आप, मुझे दीजिए माइक, मैं बोलता हूँ उनको। तो क्या है, बड़ी तकलीफ हो रही मुझे इन तमाम चीजों से। और स्पोर्ट्स की जो आप एज की बात कर रहे हैं, वो चाहे वो बंदा 41 का हो या 61 का हो, खेलने के लायक है या नहीं है? इज ही एबल टू प्ले और नॉट? वेरी वेल, ही वॉज वेरी गुड पर्सनैलिटी, मैं बोल रहा हूँ उसको, उस शख्स को। तो लोग एतराज इसलिए करते, जैसे आपने कहा क्रिकेट में कपिल देव के पीछे लग गए थे एक जमाने में,
1: ये
0: यार कपिल तो रिटायर ले ले।
1: ये अपने और भी हैं कई, जैसे रवि शास्त्री था उसको भी कहने लग
0: गए, रवि शास्त्री के पीछे लग गए, सुनील गावस्कर के पीछे लग गए थे,
1: बिल्कुल
0: ये लाला अमरनाथ के पीछे लगे थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से। सिद्धू जो थे वो अपने क्या नाम था उनका, बेहतरीन बॉलर थे, स्पिनर थे, नवजोत, उनके पीछे लग गए और भी कई लोगों के। तो मेरा मकसद बोलने का ये है कि हर बंदे की अपनी एक फिजिकल रेसिस्टेंस होती है। मेरी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अजहरुद्दीन के साथ, तो किसी बात में, बहुत पुरानी बात, 96 की बात बता रहा हूँ, एक सेकंड और लूंगा, प्रोग्राम में तवालत होती था, तवालत बहुत प्रोलॉन्ग होता बातचीत, वो ये कि सन एंड शाइन होटल में ठहरे थे बॉम्बे में, वो था उनका ट्रॉफी वोफी क्या होता है वो बकाड़िया, कौन सा स्टेडियम है बॉम्बे का। तो हमारे कजन से बड़ी करीबी दोस्ती थी साथ में, तो पढ़े दोनों स्कूल में हैदराबाद में। तो उन्होंने कहा यार अजहर से मिलना है, मैंने कहा चलो, मैं दुबई से आया हुआ था। अब मिलने के लिए गया, आप यकीन मानिए 2.5 घंटे ठहर गया वो पार्किंग में। अरे मेरे तो टांगा जवाब दे दिए। मैं बोला भाई बैठ के बात करेंगे, बोले नहीं खड़े रहेंगे। तो आप सोचिए, कंपैरिजन कर सकते हैं आप? अजहरुद्दीन का स्पोर्ट्समैन एथलीट है वो, फील्डर जबरदस्त था, उन्हें 2.5 घंटे क्या, 6 घंटे ठहर जाता उन्हें, हम थोड़ी ठहर सकते? जरा सोचिए पॉइंट को आप। भाई मेरे कजन की भी, वो भी ऊंचे पूरे पहलवान जैसे, वो बोले यार मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया, ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। बोला भाई कोई कंपैरिजन है यार उसका? वो स्पोर्ट्समैन है, हम थोड़ी स्पोर्ट्समैन है।
1: बिल्कुल, थैंक यू सर,
0: तवज्जो देना चाहिए। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए।
1: जी थैंक यू। देखो सचिन तेंदुलकर वो भी था, देखो किन्ना वधिया खेलदे, उन्हां नूं कह वो फिर ओही गल हो जांदी कि वो थोड़ा जिहा ना बंदा सोचदा भी नहीं, मैनूं पता नहीं लाइक नहीं करदे कि किवें आ, ते फिर वो छड्ड दिंदे आ। ते लो जी बिल्कुल, देखो हुण कल US ते बेलजियम दा जिहड़ा मैच होया, बेलजियम ने 4 गोल किते, मैनू नहीं लगता जिन्ने हुण तक अपा ने कोई प्रीवियसली जिन्ने भी मैच होए आ उन्हां च 4 गोल होए आ किसे होर टीम ने किते आ। सो US जिहड़ा सिर्फ 1 गोल कर सकिया, बेलजियम ने 4 किते। उंज गेम बड़ी जबरदस्त सीगी, बहुत वधिया जिहड़े प्ले किता सारे प्लेयर्स ने, पर जिथे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टंग अड़ाई है ना, इनफ्लुएंस किया। देखो कल मैं जाते जाते थोनों कहा सीगा भी देखो जिहड़े US प्रेजिडेंट, क्योंकि वो खबर मैनू उदों ही पता लगी ब्रेकिंग।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: यार इना इंश्योरेंस ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
2: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
3: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
2: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
4: आप पंजाबी आ गए
5: आईपीएल चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
6: A1 Cakes and Pastries 1997 to thodi seva karda aa reha hai. Cakes, pastries, mithaiyan, samosas te party decoration bhi le sakde ho. Nakal karke cakes ate pastries bechan walean to bacho te Jaspal Nagra nu phone karo.
7: A1 Cakes and Pastries
8: जब HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
9: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
10: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज़ दे मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेद है डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
11: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
12: Toronto's number one station, AM 530.
13: Punjabi Versa.

दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू। चाह है तुझे चाह से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान, इन त

0: फरमाइश की थी है बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी, कैसे गीत की आपने फरमाइश की है सुबह सुबह, तो गीत तो ये है ही बड़ा प्यारा है, किन्नी वधिया गीत दी तुसी सवेरे सवेरे चोन की थी है, और वाकई गीत बड़ा वधिया। सनम तेरी कसम, ओ मेरी कसम, ओ सनम सनम तेरी कसम, जैसे मैं जरूरी हूं तेरी खुशी के लिए, तू जरूरी है मेरी जान सिंह हरजीत की जिंदगी के लिए। पंजाबी वैसा 905-673-3337 आपकी और हमारी बात स्टूडियो में हो सकती है। 905-673-3337 स्टूडियो का नंबर है। एच के मूवर्स तुहाडे वास्ते हाजिर है, तुसी अपनियां गड्डियां मूव करवाउणियां कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग, ओटवा, मॉन्ट्रियल तो चला के लिया दी लोड़ नहीं, किलोमीटर बहुत पै जाने हैं। जे 500-700 हज़ार डॉलर लगता भाई, तेल भी फूकना गड्डी दे नाले, दिहाड़ी भी भरनी अपनी, ठीक है। ते जे गड्डियां तुहाडियां उत्थों मूव हो गए इत्थे आ जाण 500-700 हज़ार, जे होर की चाहिए, नाले किलोमीटर नहीं पैने, नाले गड्डी सेफ, ट्रेलर च गड्डी आनी है, कोई एक्सट्रा खर्चा नहीं, आराम नाल इन्हां दे वेयर हाउस तों गड्डी पिक करो ब्रैम्पटन तों, ठीक है जी। एच के मूवर वाले कहिंदे आ जे तुसीं मूव हो रहे टोरंटो तुहानूं महंगा लगता, जे तुसीं कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग जा रहे हैं, मॉन्ट्रियल, ओटवा जा रहे हैं, ते भाई तुहाडा समान सारा लै जाणगे इत्थों ट्रक दे विच, पर तुहानूं नहीं ना जा सकदे नाल, इह तुसीं पता कर लो, मे बी तुहानूं वी नाल लै जाण, मैनूं उहदे बारे पता नहीं, पर डिटेल्स नहीं है मेरे को इस गल दी, समान दी डिटेल्स तां है, तुहाडा समान तां सारा लै जाणगे। जे किसे कोई मोटरसाइकल पिया, कई वारी कोई बंदा सपोज करो तुसीं कैलगरी तों आए हैं, तुहाडा मोटरसाइकल उत्थे पिया, जां तुसीं वैनकूवर तों आए हैं मूव हो गए टोरंटो, जां तुसीं टोरंटो तों वैनकूवर जाणा, अपने परिवार तुहाडे उत्थे रहिंदे आ, कोई तुहाडे कोल मोटरसाइकल है, गड्डी है, कोई भी है, सारा दे सारा समान तुहाडा उत्थे छड्ड देणगे, उत्थों इत्थे लै आणगे, ठीक है भाई। नंबर नोट कर लो एच के मूवर्स वालों का 416-524-6704 ते कॉल की जा सकती है, 416-524-6704 ते कॉल जल्दी जल्दी जल्दी तो पहला कर लियो, क्योंकि ये जिहड़े बंदे है ये बड़े कमाल दे बंदे आ, बड़े प्रोफेशनल बंदे आ, वड्डे वड्डे ट्रेलर इन्हां दे कोल आ। एच के मूवर्स 416-524-6704, बड़े पुराने साडे मित्र हरमिंदर राणी, और जदों असीं रेडियो प्रोग्राम शुरू कीता सी उदों भी इन्हां दी ऐड चलदी सी। 416-524-6704 ते जल्दी जल्दी कॉल कर लियो।
1: अज दे समें विच हर मापे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच वी अग्गे होवे ते अपणियां जड़ां, अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे। इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल। साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान, दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे। बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल। गोबिंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवीं लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट। जेके तू ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 905-458-6222।
0: नंबर कर लो भाई नोट, ये बहुत जरूरी नंबर है, बच्चियां जिन्होंने छुट्टियां और बच्चे पढ़नगे, पढ़ाई करनगे चंगी।

0: इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी.
1: सोचता हूँ हर कागज पे तेरी तारीफ करूं, सोचता हूँ कि हर कागज पे तेरी तारीफ करूं. फिर ख्याल आया कहीं पढ़ने वाला भी तेरा मेरी जान दीवाना ना हो जाए. पंजाबी विरसा द वन एंड ओनली विद सिंह हरजीत शो. चलो जी अच्छा गीत कहना लाव लगा किसी को पता गैस करो. चलो तुम थोड़ा म्यूजिक सुनाना मैं जे किसी को पता दस्यो जरूर 9056733337. एक बंदे नूं पता हो सकदा बस जिन्हें कॉल की थी सी. देखते हैं भी तुम भी किन्ने दवाने हैं जेडे गीतों की फरमाइश करते हैं तो भी पता होना चाहिए भी ये म्यूजिक केड़े गीत है. 9056733337 905-673-3337 टैक्स मैसेज कि आ गया. लो जी दोबारा कर लो नोट जी नंबर फिर कड़ी गल है और एच के मूव नंबर दोबारा मंगया जी 416-524-6604 से कॉल भी की जा सकती है और थोड़े वास्ते ये नंबर हाजिर है. लो जी नीलम जी क्या हाल हैं आपके, आपका भी टैक्स आ गया है. नीलम जी वन ऑफ द ग्रेट पर्सन और डायना केयर ते सर्विस अपनी देंदे है. नीलम जी थैंक यू वेरी मच, थोड़ी भी गुड मॉर्निंग पहुंच गई है और लगा नहीं पता किसी ने गीत केड़ा है. ओ महाराज की जनाब दी ग्रेट 905-673-3337 तुसी तां फरमाइश कीती इस गीत की जिन्होंने हुण मैनूं फरमाइश कीती सी गीत उहदे विच इक गीत आ वाला फिर भी नहीं पता लगा. कमाल हो गई यार कमाल हो गई यार. सारी रात पढ़ते रहे सवेरे उठ के कहते भाई आ की गल वाली. ओ वीर मेरे हो तुसी तां फरमाइश कीती सी इस गीत की तुहानू ही नहीं पता लगा. इन्ना तो बहुत आया हूं तो ज्यादा ही सुनाता कोई साले भी नहीं पता लगा. वेरी वेरी सैड. ओ हो. अच्छा देखो मैं तुहानूं परची भी नाल दे रहा नाल मैं तुहानूं हिंट भी दे रहा नाल तुहानूं एग्जाम्पल भी दे रहा. यह गीत तुसीं हुणे ही फरमाइश कर गए हैं सारे जने सारे दे विच एक गीत है ला ते फिर भी नहीं पता लगा किसे नूं. सरप्राइज फॉर मी के ये गीत आपको पता नहीं चला. चलो कोई बात नहीं देखते हैं नेक्स्ट कॉल. हैलो
2: हाँ जी सत श्री अकाल जी.
1: सत श्री अकाल जी. कोचर साहब थोड़ा लास्ट टाइम कोचर है. हरदीप जी की हाल है ठीक हो.
2: बस सब ठीक ठाक जी बाबा जी मेहर जी.
1: चलो वेरी गुड. मैं पहचान गया सर पता लगा गीत केड़ा है.
2: हाँ जी हाँ जी ये वो एक गाना है वो हंसनी.
1: अच्छा जिन्होंने गाने की फरमाइश की थी उन्होंने पता नहीं चलिया देख लो.
2: नहीं नहीं ये बड़ा मशहूर जी किशोर जी का गाना है जी किस तरह इन असि भूल सकते हैं.
1: अच्छा थानू अच्छा लगता गीत है.
2: हाँ जी हाँ जी.
1: चलो वेरी नाइस सर थैंक यू वेरी मच. हरजीप जी वन ऑफ द बेस्ट मैन वन ऑफ द एक्सीलेंट परसन मैं कह सकता बेस्ट मैन तो उपर वो एक्सीलेंट परसन है साढ़े वीर जी ने और अहमदाबाद तो साढ़े हरदीप जी और पूरा परिवार जिथे नीति जी इन्हों बेटा जी बड़े सेवा करते हैं और मैं अगे भी जिक्र करता उन्होंने जिस वे भी कीर्तन दरबार होंगे है डे फस्ट तो लैके एंड ऑफ डे तक इन्हों की सेवा इन्नी होंगी है परिवार की पूरी कि बस बाबा जी इन्हों परिवार के उत्ते ब्लैसिंग अपनिया रखन और बाबा जी हमेशा सारी फैमिली नूं खुश रखन. हरदीप जी गुड विशेज फॉर यू.

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: संसार दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियां तक विरसे दी खुशबू पहुंचाउंदा ए है वतनो दूर रेडियो। दिस इज वतनो दूर रेडियो।
4: वतनो दूर रेडियो विच तुहाडा सारिआं दा दोस्त सुखी निजर तुहाडा सारिआं दा सत्कार करदा है ते सिजदा करदा है कनेडा विच मेहनत करके तरक्की कर रहे सारे परिवारां दा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।
3: This is Vatno Dur Radio.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: आज
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
6: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। होर कोई सेवा?
7: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
7: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
9: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा, दाल, चावल, नाले सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
10: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of it.
11: ਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੜਦਾ ਸੀ, ਓ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।

0: सेट चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स लिए चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर के इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: ओ आज ता कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदो ही बनू जदो नवे अप्लायंसेस आणगे। मैं गया लाइन इक गल, उसने वेले गड्डी चकी ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
0: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट, जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888।
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी।
4: बस इन्नी गल हो कर।

0: जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले। लेनिया हो या चार बिजनेस लाई जाना होवे या फिर घूमन लाई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लाई कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसीसागा कॉल 9056781200
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca
4: सही सुनिया बई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो या चलो AM 530 से 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: तुहाडियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है। सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफ दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम होवे, अज ही अपनी कार नूं लेके आओ। हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े, नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल, अज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नूं 905-857-5796, 905-857-7596। ANJ ऑटो रिपेयर।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Wirk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 4567-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-455-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7